सिंबल बन जाते हैं, बुराई के साइन बन जाते हैं। तो फिर वहां पर जब भी बुराई की बात आती है तो बुरा इंसान आकर सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां बुराई बताई है कुरान मजीद में, उससे दूर होने का हुक्म दिया है। कुछ बुरे लोगों के नाम भी लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, कहा फिरौन और फिरौन के लश्कर से दूर रहो, बलअम बाउरा से दूर रहो। परवरदिगार नाम क्यों ले रहा है जी? नाम इसलिए ले रहा है परवरदिगार आलम, कुछ लोग इतने बुरे हो जाते हैं, डूब जाते हैं बुराई में, उनका नाम खुद बुराई की पहचान बन जाती है, उनके नाम बुराई के लिए सिंबल बन जाते हैं। उनसे दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी सिफात से कुरान मजीद की अगर हम आयतों की तिलावत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कही कुरान मजीद में कहा कुछ चीज़ों से दूर रहो, कुछ ऑब्जेक्ट से दूर रहो, जैसे बुतों से दूर रहो। बुत जो है कोई पर्सनालिटी नहीं होते हैं, बुत यानी चीज़ें हैं, पत्थर से बनाए हुए बुत हैं जी, लकड़ी के बनाए हुए बुत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन बुतों से दूर रहो, इसलिए कि ये बुत तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएंगे, डिविएशन की तरफ ले जाएंगे। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुछ सिफात से दूर रहो, कुछ ऐसे आमाल हैं जो इंसान को ड्राउन कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, उनसे दूर रहो, जो अखलाकी बुराइयाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ नाम बुराइयों के लिए, फहशा है, मुनकर है, इन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा दूर रहो, जैसे अखलाकी बीमारियाँ हैं, झूठ है, गीबत है, हसद है, इन चीज़ों से अल्लाह ने कहा इनसे दूर रहो, बुतों से दूर रहो, अखलाकी बीमारियों से दूर रहो। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुछ अकीदे की बुराइयाँ हैं और उनसे भी इंसान को बचना चाहिए। कभी अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क से दूर रहो, कुफ्र से दूर रहो, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को तबाह कर देते हैं। शक को शुबहात से दूर रहो, ये इंसान के ईमान को खा जाते हैं। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। और कभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुछ लोग हैं जो स्टबर्न हैं, दीन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, मज़हब के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, और उनके अंदर ज़र्रा बराबर नरमी नहीं पाई जाती, ये पर्सनालिटीज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ना इनको दोस्त बनाओ और ना तुम इनके साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखो, इनसे दूर रहो अपने ईमान को बचाने के लिए। हत्ता कुरान ने कहा ला तत्तकिदिल यहूद वन नसारा औलिया, कभी इतनी दोस्ती में इतने न डूब जाना कि कुछ लोगों की दोस्ती और कुछ लोगों का साथ इतना तुम्हें अपनी तरफ न खींच ले कि तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा दीन बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों से थोड़ा बहुत कट के रहो, इस वजह से नहीं कि वो दुश्मन हैं, वो बुरे हैं, इस वजह से तुम्हारा ईमान कीमती है। पता नहीं जुमला आप तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। इस वजह से नहीं कि वो बुरे हैं, इस वजह से कि तुम्हारा ईमान बड़ा कीमती है, वैल्यूएबल है। अपने आप को बचाना उनसे बहुत ज़रूरी है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ। आग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगहों पर इस बात की तरफ इशारा किया, उनसे बचकर रहो। ये दूसरा स्टेप है जिसकी तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप अगर हम रिवायतों में जाएंगे, रिवायतों में अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरती के साथ इन दोनों प्रिंसिपल्स को बताया है, इन दोनों उसूल को बताया है, एक तवल्ला और दूसरे तबर्रा। कमालुद्दीन विलायतुना वल बराअतु मिन अदुविना, दीन को अगर कमाल हासिल देना अता करना चाहते हैं, दीन की तरक्की चाहते हैं, दो चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, एक तवल्ला और दूसरे तबर्रा। तवल्ला यानि अहल बैत से मोहब्बत, और तबर्रा यानि जो उनके दुश्मन हैं उनसे इंसान अपने आप को दूर रखे और बेजारी का इजहार करे। कमालुद्दीन विलायतुना वल बराअतु मिन अदुविना, ये फर्स्ट स्टेप है। और आगे बढ़ेंगे रिवायतों में इस बात की तरफ इशारा है। पूरी तवज्जो के साथ मेरे अजीज़ों, अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोहब्बत शिर्क एक्सेप्ट नहीं करती है। मोहब्बत में किसी और चीज़ को हम एसोसिएट नहीं कर सकते, मोहब्बत शिर्क और पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस दिल में हमारी मोहब्बत है वहाँ पर फिर गैर की मोहब्बत नहीं आ सकती।

शिर्क जो है एक मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं करती है. तो ये शिर्क से अपनी मोहब्बत को बचाओ, जैसे शिर्क से ईमान को बचाना है वैसे शिर्क से मोहब्बत को बचाना है. उसमें पार्टनरशिप एसोसिएशन इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो मोहब्बत को प्योर रखो, मोहब्बत को खालिस रखो, मोहब्बत में सिंसियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रीज़न बताया रिवायत ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के वजूद के अंदर एक ही दिल रखा है. वो दिल हमने मुहर्रम में हुसैन के हवाले कर दिया है और किसी और की मोहब्बत इसमें आने वाली नहीं है. सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले. तो मोहब्बत में शिर्क, मोहब्बत में, और कहें ये भी इनको भी मान लो उनको भी मान लो, नहीं दिल में एक ही जगह है, हमने किसी और को वो दिल दे दिया, इसमें शिर्क की कोई जगह नहीं है. यहाँ से तीसरा कदम जो थोड़ा बहुत अगर अहादीस का मुतालिया करेंगे तो अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो झूठा है जो हमारी मोहब्बत का दावा भी करे और हमारे दुश्मनों से राह रस्म भी रखे. कहते हैं ना सच शिर्क, मोहब्बत में शिर्क की इजाज़त नहीं है और मोहब्बत में दूसरे लोगों को शामिल करना, दूसरों के साथ भी मोहब्बत करना, ये चीज़ इन चीज़ों की भी मोहब्बत में इजाज़त नहीं है. तो बेजारी का इजहार करना ये दरहकीकत उसूल दीन का हिस्सा भी है और पार्ट ऑफ द दीन भी है, तवल्ला और तबर्रा. लेकिन बस बुजुर्ग उलमा कहते हैं नहीं, तवल्ला और तबर्रा ये हमें समझाने के लिए है. अल्फाज को भी तोलना पड़ता है मुझे. एक है तवल्ला और तबर्रा हमें समझाने के लिए है, लेकिन हकीकत में तबर्रा और तवल्ला है. गौर कीजिएगा, जाए घर में जाके गौर कीजिएगा. तो हकीकत में तवल्ला और तबर्रा नहीं है, हकीकत में तबर्रा और तवल्ला. जब तक ला इलाहा मजबूत नहीं होगा, इल्लल्लाह साबित नहीं होता है. पहले दूर बचाओ और फिर उसके बाद सजाओ. सजाने के बाद बचाने की गुफ्तगु नहीं है, पहले बचाओ और फिर सजाओ. प्यूरिफिकेशन का पहला पैगाम बहुत दिया गया है, तो इसकी खास तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर हम कुरान मजीद की आयतों की तिलावत करेंगे, सबसे बेहतरीन तरीका जो अनबिया की ज़िंदगी से हम अपना सकते हैं वो यही तबर्रा है. अनबिया ने कहा कि इनसे दूरी इख्तियार करो, इनसे थोड़ा बहुत बेजारी का ऐलान करो. अगर नहीं करोगे तुम्हारी मोहब्बत कंप्लीट नहीं होती है, मोहब्बत परफेक्ट नहीं होती है. अनबिया की ज़िंदगी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हदीस कुदसी में परवरदिगार मैं तेरे लिए अमल अंजाम देना चाहता हूँ, या अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा से कहा हल अमिलता लि अमलन, क्या मेरे लिए कुछ काम किया है तुमने? तो हज़रत मूसा ने कहा सल्लई तो व सुम तो व तसद्दक तो व जक्कर तो. हज़रत मूसा ने एक लिस्ट बयाना दी, मैं नोज़ार नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, सदका देता हूँ, तेरा जिक्र करता हूँ परवरदिगार, मेरा काम ही यही है. आवाज़ कुदरत आई, अय मूसा नमाज पढ़ते हो जन्नत में जाने के लिए, रोज़ा रखते हो जहन्नम से बचने के लिए, सदका देते हो बलाओं से बचने के लिए, जिक्र करते हो हयात को तुलानी बनाने के लिए, सारी चीज़ें अपने लिए, मेरे लिए क्या करते? मेरे लिए क्या करते हो? हज़रत मूसा ने कहा परवरदिगार तू ही बता तेरे लिए क्या करूं. आवाज़ कुदरत आई तवालैत ली वलीयन व आदैत ली अदुव्वा, क्या मेरे लिए किसी से तुमने मोहब्बत की है या मेरे लिए किसी से तुमने दुश्मनी की है? मेरे लिए यानी अल्लाह के राह में, अल्लाह हमारी पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं है, राह खुदा में क्या तुमने मेरे लिए किसी से दोस्ती की है और राह खुदा में किसी से तुमने दुश्मनी की दूरी इख्तियार की है? उसके बाद हदीस कहती है अल हुब वल बग्द लिल्लाह, मोहब्बत और दुश्मनी अल्लाह के लिए होने लगे वो काम अल्लाह के लिए हो जाता है, वो काम अल्लाह के लिए हो जाता है. अनबिया ने प्रैक्टिकल लाइफ में बताया, हाँ कहीं किसी को चाहना है और किसी से दूरी

रखते हैं वही जानते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद कौन है, लेकिन बुरे इंसान को सारी दुनिया उनसे नफरत भी करती है और दूर भी रहते हैं। उसमें वो मीर भी शामिल है, सब दूसरे भी शामिल है, बुरे को बुरा सब कहते हैं। वह ना से अजमाइन, इसका दायरा थोड़ा बहुत लानत का बड़ा हो जाता है। अगर कंपेयर किया जाए सलवात और लानत में तफसीरी नुकता है, बड़ा हो जाता है दायरा। अल्लाह तबारक तआला का मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हूँ, इस इबादत में अपने आप को दूर नहीं रखना है। लेकिन क्या नाम की जरूरत है जी? बड़ा खूबसूरत जुमला किसी बुजुर्ग आलिम दीन का है कि नहीं? अक्सर हमारे उलमाए कराम कहते हैं नामों की जरूरत नहीं है, हत्ता किसी को पर्टिकुलर नाम लेकर लानत करें नहीं, इसकी हमें इजाजत नहीं है। मुज्तहिदीन ने, मराजा कराम ने रोका है तो कोई मसलहत है। हम जमीन पर चलकर कुछ चीजों को समझते हैं, वो हमारे ऊपर बैठकर चीजों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो दुनिया को वो नक्शे की तरह देखते हैं, हम दुनिया को कबीले की तरह देखते हैं। जो मराजे कराम होते हैं वो दुनिया को मैप की तरह देखते हैं, मैप को हमेशा ऊपर से देखा जाता है और उनको नकूश मालूम होते हैं क्या करना चाहिए। नाम की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? आप थोड़ा बहुत सीरियस हो गए। नाम की ज़रूरत क्यों ज़रूरी नहीं है? इसलिए कि रहमत और लानत को खुद पता होता है उन्हें कहाँ जाना है। रहमत और लानत को खुद पता है उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन नहीं उन्हें कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है ये भी पता होता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह या रसूल अल्लाह। कहाँ तक जाना है? हर जमाने में रहे, हर जमाने में कहीं नाम नजर आए, कहीं नाम नजर नहीं आए, कुछ लोग दोस्त नजर आए, कुछ लोग दुश्मन नजर आए। आयतुल्लाह मुताहरी कहते हैं अपने किताब जाज़िबा और दाफिया में, मुमकिन नहीं है कोई कहे कि मैं सबको पसंद करता हूँ, ऐसा आदमी दुनिया में मैंने नहीं देखा है। अगर कहीं आप मिलता है तो वो लेकर आओ जो कहे मैं सबको पसंद करता हूँ, खाने में है ये खाता हूँ या नहीं खाता, बिजनेस में करता हूँ या नहीं करता जी, रोज़मर्रा कामों में ये काम मुझे पसंद है ये काम पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कहे मैं सबको पसंद करता हूँ, सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो नाम की ज़रूरत नहीं है, नाम वो पता है एड्रेस उनको, वो खुद ब खुद चले जाते हैं वहाँ पर। कभी कभार हम कहते हैं तो चले जाते हैं, कभी कभार आए मुबाहला कहते वो जा रही है, आप तुम छोड़ भी दो वो खुद ब खुद, एड्रेस की भी उनको ज़रूरत नहीं है। कभी एक आदमी है, कभी कबीला है। अल्लाह अकबर, कुछ कबीले ऐसे गुजरे हैं पूरा घराना इस लपेट में आ जाता है, फजाइल में भी सलवात के दायरे में आ जाते हैं और लानत की लपेट में भी चले जाते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ सूरह अबी लहब में है, तब्बत में ये दोनों शामिल हो जाते हैं और सलवात में भी घराना शामिल होता है। कुरान मजीद ने कहा शजर ए तैयबा, ये सब सलवात वाले हैं, और शजर ए खबीसा, ये सब लानत वाले हैं। और कभी कभार फर्द है, इंडिविजुअल है, कभी कभार मुमकिन है पूरा कबीला उसमें शामिल हो जाता है। किसी ने रिवायतों में गुफ्तगू किया हमारे उलमाए कराम ने, बाज़ घराने ऐसे हैं बाप बेटा बेटी सब इसमें शामिल हो गए। ये अशअस का खानदान, ये अशअस का खानदान कहते हैं ना, अशअस एक नाम है, अशअस इसका खानदान पूरा बाप मौलाए कायनात के मुकाबले में, बेटी इमाम हसन की जौजा जौदा बिनते अशअस, और बेटा हजरत मुस्लिम को शहीद करने वाला, बाप भी बेटी भी बेटा। कभी कभार ऐसे हो जाते हैं ये पूरा खानदान घराना इसमें लपेट में आ जाता है। एक आदमी नहीं, एक आदमी को क्यों बोले हम लोग, शजरत खबीसा कह दें वो सब लोग इसमें आ जाते हैं और उनका किरदार कभी दुनिया में आगे बढ़ने वाला नहीं है। बात मुकम्मल हो गई और मेरी तकरीर भी ख़त्म हो गई। ये तीसरा स्टेज, कभी फ़र्द नहीं कभी कबीला भी आ जाता है। हाँ, हमारे उलमाए कराम ने किनायतन इशारतन गुफ्तगू की है ताकि लोगों को तक बात पहुँचे, और गुफ्तगू को आप लीजिए और इंशाल्लाह महसूस होंगे कि इबादत अंजाम देना है, इबादत का सलीका होता है, इबादत
سچویشنز کو دیکھ کر کی جاتی ہے، عبادت جگہ کو دیکھ کر کی جاتی ہے، عبادت

0: लिए एक रहनुमा उस्ताद मुकर्रर कर रखा था। चंद दिन बाद बातुर सदर की क्लास के रहनुमा उस्ताद मेरे पास आए और कहने लगे, सैयद बाकर ने पहली क्लास खत्म कर ली है। मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने सैयद बाकर को अपने दफ्तर बुलाया और उनसे इम्तहान लिया। मुझे एहसास हुआ कि बाकर सदर पहली क्लास पढ़ सकता है। मैंने उसे दूसरी क्लास में दाखिला दे दिया। साल के इख्तिताम से पहले ही उसने दूसरी क्लास भी खत्म कर ली। इस तरह वो 2 सालों में 4 क्लासें खत्म कर गए। उस वक्त इमाम मूसे काजिम अलैहिस्सलाम के सहन में मजलिस अज़ा बरपा हुआ करती थी, जहां बगदाद और दीगर शहरों से जय्यद उलमाए दीन मजलिस पढ़ा करते थे। मैं और अहमद अमीन हौजा के तल्लाब को मश के तौर पर मजलिस लिख कर दिया करते थे, ताकि वो खतीब मजलिस से पहले मिंबर पर जाकर उसे पढ़ा करें। तल्लाब की अच्छी कारकर्दगी पर उन्हें इनामात भी दिया करते थे। सबसे बड़ा और ज्यादा इनाम हमेशा सैयद बाकरो सदर लिया करते।
1: इसी जमाने में नजफ अशरफ बाएं बाजू और कम्युनिस्ट अफकार और नजरियात की आमाजगा बन चुका था। तवज्जो तलब बात यह थी कि सैयद सदर आलम जवानी में ही मार्क्सिज्म और बहुत सी दीगर फलसफी मकातिब से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे। जैसा कि उनके असातजा में से एक का कहना है कि सैयद सदर उस वक्त उनसे मार्क्सिज्म के बारे में किताबें लिया करते थे। वो कहते हैं कि मुझे शक हुआ कि क्या बाकर उस सदर इन किताबों को समझता भी है, सो मैंने उनसे एक ऐसा सवाल कर डाला कि मैं समझ सकूं कि हकीकत में ये किताबें उनकी समझ में आ भी रही हैं या नहीं। जिसके जवाब में सैयद बाकर ने मार्क्सिज्म के तूल व अर्ज और गहराइयों को इस अंदाज में बयान किया कि बहुत से ऐसे सवालात और शुबहात जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, वो निकात भी मेरी समझ में आ गए। शहीद सदर की इब्तदाई तालीफात में से एक फिदक तारीख के औराक में है, जो 1955 में मंजरे आम पर आई। लेकिन सैयद के शागिर्दों का कहना है कि उन्होंने ये किताब 1945 में लिखी थी। उस वक्त उनकी उम्र 11 साल थी। अगर हम इस रिवायत को मान लें तो सैयद ने 11 साल की उम्र में मुसलमानों की तारीख में दीन और सियासत के बाहमी इख्तलात के अहम तरीन मौजू पर बहस व गुफ्तगू की है।
2: जैसा कि आपने एक मिसाल पेश की है, किताबे फिदक अपना सानी नहीं रखती। ये हुजम के एतबार से बहुत छोटी और मानी के एतबार से बहुत अमीक और अपने मौजू में बहुत बेमिसाल किताब है। सैयद सदर की ये किताब इनकी काबिलियत और सलाहियत पर सैकड़ों दलीलों के बराबर है।
1: बाकर उस सदर ने बहुत तेजी के साथ एकेडमिक तालीम से फरागत पाई और मरकज तशय्यो यानी नजफ अशरफ की दीनी दरसगाह में हुसूल इल्म के लिए खुद को आमादा कर लिया। सन 1946 सैयद अबुल हसन इस्फहानी की रहलत का साल है। इसी साल बाकर उस सदर अपने भाई सैयद इस्माइल के साथ लबनान का सफर करते हैं और दूसरी तरफ मरकज़े तशय्यो नजफ अशरफ सैयद मोहसिनुल हकीम को अपने मरजाए तकलीद के तौर पर कबूल कर लेता है और यहीं से इराक और हौजाए इल्मियाए नजफ की तारीख का एक नया बाब शुरू होता है, जहां से बाकर उस सदर अपनी जिंदगी के अहम तरीन दौर के सफर का आगाज करते हैं।
3: हम लोग सैयद अबुल हसन अस्फहानी की रहलत का चहलम मना रहे थे और शेख मोहम्मद रजा मुजफ्फर भी उस मजलिस में तशरीफ फरमा थे। सैयद सदर अपने भाई सैयद इस्माइल के हमराह मजलिस में तशरीफ लाए। मैंने उस वक्त उन्हें पहचान लिया। उन्होंने नीले रंग की कबा पहनी हुई थी।
1: सैयद बाकर उस सदर ने 1946 में हौजाए इल्मिया नजफ में अपनी दीनी तालीम के आगाज से ही खुद को 16 घंटे रोजाना

0: किसने तहरीर किया है? सैयद ने जवाब दिया, इस बंदा नाचीज ने। शेख फरमाने लगे, तुमने लिखा है? शेख रजा ने अपने दरसे खारिज में ऐलान किया कि सैयद बाकर ने कुछ जदीद मसाइल पेश किए हैं जो हमारी फिक्ही किताबों में नहीं पाए जाते।
1: बाकिर उस सदर रात के वक्त अपनी हमसायगी में मौजूद अपने उस्ताद आयतुल्लाह उल उस्मा खुई के घर तशरीफ ले जाते थे, जहां वो अपनी तहकीक के बास पहलुओं पर गुफ्तो शनीद किया करते थे। यहां तक कि बाज औकात ये इल्मी बहस तहमीस की महफिल रात गए तक जारी रहती थी। अक्सर औकात शहीद सदर अपने उस्ताद के घर से आधी रात को निकलते थे तो उनके हाथ में अपने उस्ताद की बहस की एक याददाश्त हुआ करती थी। बाकिर सदर के शागिर्दों का कहना है कि सैयद अबुल कासिम खुई तलबा को अक्सर औकात मुख्तलिफ अश्कालात के जवाब के लिए बाकिर सदर के पास भेज दिया करते थे। बाकिर सदर के शागिर्द और ईरान के मौजूदा चीफ जस्टिस आयतुल्ला महमूद हाशमी का कहना है कि आयतुल्ला खुई ने शहीद बाकिर सदर को मिनहाजुस सालेहीन नामी फिकही किताब को मुरत्तब करने की हिदायत की थी और अक्सर औकात आयतुल्ला खुई शहीद सदर से बहस के बाद अपने फतवों में तब्दीली किया करते थे। यहाँ तक कि उमूर हज से मरबूत कई मसाइल शरई में शहीद सदर और आयतुल्ला खुई के दरमियान बाहमी तबादले राय के बाद तब्दीली की गई। सन 1956 यानी बाकिर सदर के नजफ़े अशरफ में दीनी उलूम की तहसील को 10 साल का अरसा गुजरा कि बाकिर सदर ने अपने उस्ताद मुअज़्ज़म आयतुल्ला खुई की तरफ से इज्तिहाद की तहरीरी सनद पाई, जबकि उस वक्त उनकी उम्र शरीफ सिर्फ 21 साल थी।
2: मैंने आयतुल्ला अबुल कासिम खोई को ये कहते हुए सुना कि सैयद बाकर सदर मुज्तहिद हैं, लेकिन सैयद सदर को कम उम्र की वजह से इज्तहाद की सनद नहीं दी गई। चुनाचे इन जुमलों के सुनने के बाद सैयद सदर ने मुझसे कहा कि आयतुल्ला खोई से इज्तहाद की इजाजत ले दें। एक दिन उलमा की एक बहुत बड़ी महफिल थी कि मैंने आयतुल्ला खोई से पूछा, क्या बाकिर उस सदर मुज्तहिद हैं? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ वो मुज्तहिद हैं। मैंने कहा, तो फिर इज्तहाद का इजाजतनामा दे दीजिए। इस पर उन्होंने इजाजतनामा तहरीर कर दिया।
1: मस्जिदे हिंदी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम के बिल्कुल करीब क़िबला बाजार के पास वाक़े है। इस मस्जिद से नौजवान मुज्तहिद बाकिर सदर ने इज्तहाद की सनद पाने के बाद दरसो तदरीस का बाकायदा आगाज किया, जिसने आगे जाकर इराकी तारीख के अहम तरीन अबवाब को रकम करना था। नजफ़ अशरफ दुनियाए तशय्यो का मरकज। यहाँ से बाकिर सदर ने एक हौजवी उस्ताद के तौर पर अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया, जबकि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। इराक में 1920 में मुख्तलिफ मराजाए दीन शेख अबुल हसन इस्फहानी मिर्जा नाइनी शेख मोहम्मद खालिसी की क़यादत में दीनी तहरीक के जरिए उस वक्त के इस्तेमार बरतानिया को इराक की सरजमीन से निकाल बाहर किया और मुल्क की बागडोर मलिक फैसल के हवाले कर दी। उस वक्त से लेकर सन 1960 तक उलमा अमली तौर पर मैदान सियासत से बिल्कुल दूर रहे। दूसरे अल्फाज में 40 साल तक तशय्यो के इल्मी और फिक्री और दीनी मरकज नजफ़ अशरफ में किसी किस्म की दीनी अवामी तहरीक या तंजीम नहीं थी।
3: इराक में इस्लामी तहरीक की तासीस की फिक्र 1953 में नजर आती है, जिनमें हिजबुद्दावा से पहले अकायदीन, शबाबुल मोमिनीन और बाज दीगर नामों से कुछ कोशिशें नजर आती हैं।
1: सन 1958 में इराक में बादशाहत के सकूत का एक बड़ा सियासी जलजला रूनुमा हुआ, जिसके झटके हौजाए इल्मिया नजफ ने भी महसूस किए।

0: और इराक दो अहम सियासी गिरोहों में तकसीम हो गया। एक वो गिरोह था जिसे जनरल अब्दुल करीम कासिम चला रहा था, जिसके साथ ही इराकी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते थे, जबकि दूसरा गिरोह जनरल अब्दुस्सलाम आरिफ का था, जिनके साथ पैन अरबिज्म और बास पार्टी के लोग थे। पूरा मुल्क इन दो गिरोहों की बाहमी चपकलिश और सियासी रस्साकशी की लपेट में था। ऐसी सूरत में बाज़ उलमाए दीन, जो कि हाजरी दर्जाबंदी के एतबार से दूसरे दर्जे पर फाइज थे, उन्होंने एक दीनी तहरीक का तसव्वुर पेश किया। हिज्बुद्दावा तारीख तशय्यों की सियासी तहरीकों में सबसे ज्यादा बहस व जदल में रहने वाली इस्लामी तहरीक, जिसकी इन हालात में तासीस के बारे में बहुत सारे सवालात उठाए गए। इस तहरीक के वजूद में आने वाले अवामिल और इसकी तारीख के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जो चीज यकीनी तौर पर कही जा सकती है वो ये है कि इराक में बढ़ते हुए कम्युनिस्ट नजरियात ने उलमाए दीन को इस तहरीक की तरफ माइल कर दिया।
1: इराक में फैलाए जाने वाले कम्युनिस्ट अफकार और नजरियात दीगर अरब ममालिक से बहुत मुख्तलिफ थे। इराक में दीन को मार्क्सिस्ट नजरियात के प्रचार के लिए एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, और इराक के बाशऊर उलमा की इस तहरीक की तासीस के अवामिल सिर्फ दाखली हालात और मसाइल न थे, बल्कि इराक से बाहर के हालात ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया था।
0: काहिरा अख्वानुल मुस्लिमीन के लीडर हसन बना और शहीद कुतुब की जाय पैदाइश। अख्वानुल मुस्लिमीन की तहरीक के तजुर्बात ने इराकी शियों को इज्तमाई हरकत ईजाद करने में मददगार आमिल का किरदार अदा किया। इस फर्क के साथ कि इराक की इस्लामी तहरीक ने अख्वानुल मुस्लिमीन की सिर्फ अमली रविश को अपनाया। अख्वानुल मुस्लिमीन से किसी हद तक मुतासिर होने की वजूहात नजफ अशरफ के तरबियत याफ्ता वो अफराद थे, जैसे सैयद जमालुद्दीन अफगानी, जो काहिरा में इस तहरीक के कायदीन के तौर पर फाल नजर आते थे। यही वजह है कि सैयद कुतुब और हसन बन्ना की किताबें नजफ अशरफ के उलमा की नई नस्ल की तवज्जो अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। हमारे ख्याल में यहाँ अरबों का ये मशहूर कौल किसी हद तक सच्चाई से करीब नजर आता है कि काहिरा लिखता है, बैरूत छापता है और इराक मुताला करता है। एक तरफ इराक में बढ़ती हुई कम्युनिस्ट तहरीक और दूसरी तरफ काहिरा में अख्वानुल मुस्लिमीन की तहरीक, दो ऐसे अवामिल यकजा हुए जिसने उलमाए नजफ की तहरीक में मजीद तेजी पैदा कर दी। अलबत्ता बाज अफराद ने इराक के हमसाए ईरान में बादशाहतों के मुख्तलिफ अदवार और हौजात इल्मिया के किरदार को भी इराकी सियासत के मददगार आमिल के तौर पर तस्वीर किया है। हिज्बुद्दावा की इब्तदाई फिक्र आयतुल्ला मोहसिनुल हकीम के फर्जंद सैयद मेहदी हकीम की तरफ से बाकिरुस सदर की खिदमत में पेश हुई, जिसे बाकिरुस सदर ने फौरन कबूल किया, क्योंकि सैयद बाकिरुस सदर भी एक ऐसी इस्लामी जमात की तश्कील की फिक्र में थे जो चंद सालों में ही इराक में इस्लामी हुकूमत तश्कील दे, और यूं 1200 साल के बाद तारीख मर्जियत में एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली रुनुमा होने जा रही थी। और सैयद बाकिरुस सदर ही वो पहले फकीह हैं जिन्होंने इराक में इस्लामी इनकलाब के बारे में भरपूर संजीदगी के साथ कोशिशें शुरू कर दी थी, और जबकि दूसरे फकीह जो बिल्कुल उनसे मिलती जुलती फिक्र रखने वाले थे उनके रूह रवा हजरत इमाम रूहुल्लाहुल मुसवी खुमैनी थे।
2: दूसरे दिन सुबह के वक्त सैयद मेहदी हकीम मेरे पास आए, जिनके हाथों में शहीद बाकिरुस सदर की तरफ से एक तहरीर थी जिसमें लिखा था, सैयद मेहदी मेरी तरफ से आपके लिए एक पैगाम लाए हैं, और वो पैगाम ये था कि हमें हकूमत इस्लामी की तश्कील देने की जरूरत है।
0: इस्लामी तहरीक की तश्कील के लिए पहला जलसा नजफ अशरफ में बाकिरुस सदर के घर पर मुनक्किद हुआ, और आहिस्ता

0: इसका तर्जुमा किया है। और इसी तरह एक और जर्मन मुफक्किर ने बाकिर सदर के बारे में मकालात तहरीर किए हैं।
1: 4 अप्रैल को हर साल इराक के मरजाए आली कद्र आयतुल्ला उल उज़्मा सैयद मोहम्मद बाकिर सदर की शहादत का दिन आता है। और ये दिन इराक और इराक से बाहर लाखों इंसानों को गमो अंदोह के समंदर में गोताजन कर देता है। दुनिया भर में करोड़ों इनकलाबी अफराद के लिए उन्होंने फिक्र अमल के जो रहनुमा खतूत खींचे थे, अब वो एक ताकतवर आमिल के तौर पर कारफरमा नजर आती हैं।

0: chance of a good night's sleep. Chris, Ten Foam. It's a
1: busy life में कैसे spirituality quality का मतलब ये होता है कुछ लोगों के ज़हनों में ये है कि हम बहुत

0: मतलब स्पिरिचुअलिटी या
1: बिलीव करता है कि सिर्फ उसकी बॉडी है, उसकी कोई सोल ही नहीं।
2: तकरीबन हमारे लिए एक जाहिर सी चीज़ है, बराबर है, क्योंकि अहमियत जो है इस्लाम में वो स्पिरिचुअलिटी का जो मेजर

0: है वो हम फ्रेमवर्क के अंदर अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी मानवीयत,
1: ऐसा नहीं है कि आप जो है आखिरत,
0: ये एक एस्पेक्ट है वो भी इस्लाम में, क्या आयतुल्लाह
1: फरमाया कि साथ

टोटली कोलैप्स हो रहा है, तो वो ये क्लेम नहीं कर सकते हैं एक बिजनेसमैन हूँ या मैं हस्बैंड हूँ। मिसाल के तौर पर आपकी बात से ऐड करते हुए, इमाम हुसैन से अटैच्ड है, बहुत बार ऐसा होता है कि अली। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि थोड़े टाइम के लिए, तो वो कैसे अपने आप

0: भाई भी अगर इस पर एक्सपेंड करें, लेकिन खुदा के जिक्र के जरिए से
1: जो लड़की गुजर रही है
0: जी,
1: इस पर्सपेक्टिव में जिक्र को भाई जब
2: सही है कि सलाम अल्लाह के नबी कुरान में कोई चीज़ देखता हूँ सामने, कोई को अपने हिसाब से कहती है बाकायदा हॉर्मोन्स और सारी चीज़ें जो है ना इंसान की क्रिएशन स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये एक लज्जत जो है वो इंसान के जहन में पैदा होती है, चाहे वो आँखों के ज़रिए से हो कुछ। अब क्योंकि वो उस हकीकत से वाकिफ नहीं होता तो वो उसमें बह जाता है। दूसरी तरफ एक लजीज खाना

0: शायद हो सकता है कि मैं कारबुर्दी कहते हैं यानी उसको वो करेंगे, लेकिन ये हदीस जो है इसकी इंग्लिश वाली अवेलेबल है
1: जी,
0: उर्दू वाली शायद अभी आपकी जिंदगी में है, ये बकौल आप दिया देना चाहता था
1: इवेंट्स हैं, हादसात हैं,

0: कितना टाइम स्पेंड करता हूँ.
1: अल्टीमेटली
0: लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ मैं, लोगों के साथ इसलिए बैठा, अपनी भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो वहां से.
2: अल्लाहुम्मा अज्जिल लि वलीयक.